लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

శ్రీ పరమాత్మనే నమః శ్రీ మౌలికాలిక దేవే నమః విద్యుతాం సమప్రభాం రేవతి సుందరస్థితామీశ్వరాం కన్యాభిః కర్వాలఖేత విలసద్దాస్తవిరా సేవిదాం హస్తిశకరగదా శిఖేత విష్కాంసా పంగుణం తర్జనీం విభ్రాణమనలాతికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే देवी भगवती मौलकालिका को चरण में हार्दिक नमन तपाई को अंतरदिल में विद्यमान आदोस्वरूपी परमात्मा नमस्कार मध्य नेपाल को उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 को प्रभात कालीन प्रस्तुति कार्यक्रम आराधना में तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कृष्णमणि प्रविधि संयोजन मित्र राजेन्द्र एवं अरुण का साथ में आज को यह शुक्र वर्षाई में तब हम ये दिव्य यात्रा गरिरहेका छौं। धार्मिक सेवा समिति मौलकालिका मंदिर को सहयात्रा एवं सहयोग में संचालित इस कार्यक्रम यहाँ प्रत्येक दिन यह शुभ बिहानी को 5 बजेदेखि सुन्दै आउनु भएको छ। आउनुस कार्यक्रम को श्री गणेश गरौं। आज को पंचांग संग सम्बद्ध जानकारी आज मिति 2083 साल भाद्र 8 गते सोमवार तदनुसार अगस्त 24 तारीख सन 2026 अहिले श्रावण शुक्ल पक्ष को द्वादशी तिथि द्वादशी को घड़ीपला रहेको छ अहोरात्र नै। यसैगरी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेको छ 38:49 जसको अवधि हुनेछ रात्रि को 9:11 सम्म को। यसैगरी प्रीति योग रहेको छ करणमा भवकरण छ। यसैगरी बालवत करण रहेको छ। आनन्द आदि योगमा उत्पाद योग छ। धनराशिमा चन्द्रमाको अवस्थिति रात्रिको 3:47 सम्मको रहेको छ। दिनमान 32:11 रहेको छ। सूर्योदय बिहान 5:39 हुँदैछ भने सूर्यास्त साँझ 6:32 हुनेछ। आज यस पावन क्षणमा हामी शक्तिमयी माता भगवती मौलकालिका देवीको उपासना गर्दैछौँ। आउनुहोस् धर्मार्थ काम मोक्ष सबै किसिमका पुरुषार्थ प्रदान गर्नुहुने शक्तिमयी माता भगवतीको उपासना गरी जीवनमा कृतकृत्य बनौँ। देवी भगवती जसलाई हरेक दिन करिब 1500 को हाराहारीमा उपस्थित भक्त सज्जनहरूले उपासना गर्नुहुन्छ, यसैबाट देवी भगवतीको महिमा कति प्रचारित छ एवं महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरो प्रष्ट हुन्छ। धेरैको रोजाई तथा धेरैको आगमन हुने यो पावन स्थल तपाईँका लागि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण एवं रोजाईको स्थल बन्न सक्दछ। आउनुहोस् भगवती देवीको उपासना गरी कृतकृत्य बन्नुहोस्। आफ्ना विविध सङ्कल्पहरू भाकल्पहरूलाई मनका आकाङ्क्षा इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्नका लागि श्रद्धालुहरूले जसरी उपासना गर्दै आउनु भएको छ त्यही मार्गलाई अवलम्बन गर्दै तपाईँ हामी पनि उक्त सफलताको शिखरमा पुग्न अग्रसर बनौँ। उद्यमी नै सिद्धन्ति कार्यणी मनोरथै भने जस्तो हामीले भगवतीको उपासनाका लागि तदारुकताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय नै देवी भगवतीको शुभ आशीर्वाद एवं अनुकम्पा हामीलाई प्राप्त हुनेछ। असल कर्मका लागि सुस्ताउनु हुँदैन, ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसैले शुभस्य शीघ्रम भने जस्तै असल कर्मका लागि तुरन्त सङ्कल्प अनुसार अगाडि बढ्नु उत्तम हुन्छ। भगवती देवीको उपासना गरी कृतकृत्य बन्नुहोस्। यहाँलाई यो जानकारीमूलक सन्देश निवेदन गर्दै हामी भगवती देवीको चरणमा यी शब्द सुमनहरू अर्पण गर्दै अबको क्रममा पनि हामी सुन्दैछौँ भगवान श्री शिवको यो भजन।